0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: कदाढ़ी लगी आसीने में महबूब घुरायो मदीने में ही शहर छदे अचन लाल लदे ही शहर छदे अचन लाल लदे इन सा

0: महबूब घुरा।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जी लाने, जी लाने, जी लाने।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अमेरिका इसराइल के जुल्मन के कदें भी न विसारींदासी। अमनाए हुर्मुज जा समूरा मामला ईरानी डिसंदो। लेबनान समेत समूरन महाजन ते जंग खत्म थियण घुर्जे। अमेरिका सां मुआहदे बाबत ईरान जो बाज़ाब्ता मौकुफ़ साम्हूं अची वियो। तहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाइचो कुर्बानियूं ॾेई पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो। ईरानी अवाम पंहिंजे फ़ौज जो भरपूर साथ ॾिनो। आलमी बिरादरी इसराइल ऐं अमरीका जे ज़ुल्मनि जी मज़म्मत करण में नाकाम रही। अमरीका सां मुआहदे ते जुमे ते जनेवा में सही वारियूं तकरीबूं थींदियूं। सहीन खां अॻु ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्कनि जा दौरा कंदा। अमरीका खे ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाइ डिघो सफ़र करणो पवंदो। ईरान हाणे वधीक ताक़तवर थी उभरियो आहे। जनेवा में 19 जून ते अमरीका ऐं ईरान विच में मुआहदे वारी तकरीब जी मेज़बानी पाकिस्तान कंदो। जंग जे डिघी रात बाद ऐं अमन जो सिजु निकिरी चुको आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका लिबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग रोकण जो ऐलान कयो आहे। तारीख़ी मुआहदे जी तकरीब 19 जून जुमे वारे ॾींहुं जनेवा में थींदी।

मुल्कनि में अमन मुआदो न पर ॾाहप ऐं सफारतकारी जी फतह आहे। मुआदे ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ऐं ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफ़ा खामनाई समेत सभिनी खे मुबारक ॾियां थो। जेसिताईं मुआदे जा समर आवाम ताईं न पहुचंदा, सुख सां न वेहंदुसि। हुकूमत बजेट में हथ करे स्पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी खे आगाही। नवीद कमर जी ब्रीफिंग खां पोइ बिलाल भुट्टो अॼु ऐवान में रिथियल बजेट तकरीर मुलतवी करे छॾी। हुकूमत खां अंग अखरनि में फेर बाबति वज़ाहत वठण जो फ़ैसिलो। ज़रियुनि मूजिब एमएलए नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलाल भुट्टो खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त विस पार्टी सां शेयर कयल बजेट ऐं ऐवान में पेश कयल बजेट जे अंगनि अखरनि में वॾो फ़र्क़ु आहे। ऐवान में उहा बजेट पेश न आहे थी जेका पीपी खे ॾेखारी पई हुई। सिंध जे नए माली साल जी बजेट 17 जून अरबा ॾींहुं पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मनि जी पघारनि में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन में 8% ऐं पोरियतुनि जी माहवार उजूरे में 20% वाजिबु इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजेट इजलास अरबा ॾींहुं 2 वॻे तलब करे वरितो। सिंध असेंबली जे बजेट इजलास खां अॻु बजेट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबिना जो इजलास थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक़ियाती बजेट 800 अरब रुपियनि खां घटि रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सिहत ऐं तालीम वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वेंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में 10ों भेरो सिंध जी बजेट पेश कंदो। मर्दान में तरबियती जहाज़गिरी तबाह। एसपीआर मूजिब जारी तरबियती उॾाम दौरान किरी तबाह थियो। हादसे जे नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ऐं बहरिया जो लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद थिया आहिनि। फील्ड मार्शल सदर आसिम ने हथियारबंद फौजनि जे सरबराहन पारां डुख जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घर वज़ीर मोहसिन नकवी, वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि 12 हादसे में ॿिनि जाननि जे नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छॾियो। व्याज जी शरह 11.5% बरकरार रखण जो ऐलान स्टेट बैंक के इजलास बाद पॉलिसी ऐलान कयो। केटी बंदर जे इलाइक़नि में सामूंडी वेरिन तबाही मचाए छॾी। कमज़ोर बचा बंदनि खे मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा पवण सवाइ टिन गोठनि में समुंड जो पाणी दाख़िल। इंतिज़ामिया को तहरुक न वरितो। रहवासियुनि जो चवण आहे त सामूंडी वेरिन सबबि बचा बंद कमज़ोर थी विया आहिनि। समुंड जो खारो पाणी रहायशी इलाइक़नि में दाख़िल थी वियो आहे। पाणी घरनि में दाख़िल थियण करे ॻोठ अलीबख्श जत, आशिम जत ऐं उस्मान दबलो में सामान सड़ी लुड़ी वियो। रहवासी लटपड़ाइण ते मजबूर आहिनि। ज़िले इंतिज़ामिया का बि सार न लधी।

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
3: हर माह मुनाफा आमदनी में इजाफा बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This transact is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN.
5: Wo qurbani dei panje watan jo difa kayo Iran awam panje fauj jo puro saath dino aalmi brotheri Israel अमरीका जो जुर्म की मज़म्मत करण में नाकाम रही। अमरीका से मुआहदे के जुमे से जिनवा में सयूं कई वेंदियों। सही का अग ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्क जा दौरा कंदा। अमरीका के ईरानी आवाम जो भरवसो हासिल करण लाइ डिघो सफर करणो पवंदो। ईरान हाने वधिक ताकतवर थी उभरियो आहे। जिनवा में 19 जून ते अमरीका ए ईरान विच में मुआहदे वारी तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान कंदो। जंग के डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे ईरान ए अमरीका लबनान समेत समूरन महाजन ते जंग रोकण जो ऐलान किया है। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून जुमे वारे डी जिनवा में थी। ही बिन मुल्क में अमन मुआहदों पर लहाफ ए सफारतकारी की फतेह है। मुआहदे से अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई समेत सभी के मुबारकबाद दिया तो जैसी तई मुआहदे जा समर आवाम ते न पहुंचा सुख से की आगाही। नवीद कमर की ब्रीफिंग का पोए बिलावल भुट्टो अज ऐवान में रिथियल बजट तकरीर मुलतवी कर छी। हुकूमत का अग अंग अखरन में फेर बाबत वजाहत वठण जो फैसलो। जरिन मूजिब एमएनए नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो के ब्रीफिंग डींदे बुधायो तो पीपल्स पार्टी से शेयर कल बजट ऐवान में पेश कल बजट के अंग अखरन में वो फर्क है। ऐवान में यह बजट पेश नए थी जी पीपी के डेखारी वही हुई।

सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून 4 पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मनि जी पगार में 10% रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन में 8% ऐं पोरतन जी माहवार अजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 2:30 तलब करे वरितो। सिंध असेंबली जे बजट इजलास खां अॻु बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो इजलास बि थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रूपये खां घटि रहण जो इम्कान अहमियत ॾिनी वेंदी। वॾो वज़ीर मुरादरी शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में 9 भेरो सिंध जी बजट पेश कंदो। मर्दान में तरबियती जहाज किरी तबाह, 2 पायलट शहीद। ISPR मूजिब जहाज मामूल वारे तरबियती उॾाम दौरान किरी तबाह थियो। हादसे जे नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ऐं बेरिया जो लेफ्टिनेंट ताह अबासी शहीद थी वियो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर हथियारबंद फौजनि जे सरबराहनि पारां हादसे जे डुख जो इज़हार कयो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ॿियनि पारां हादसे में ॿिनि जाननि जे नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो। असिस्टेंट स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार रखण जो ऐलान। स्टेट बैंक इजलास बाद पॉलिसी जो ऐलान कयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती हैं अम्मी, मैं मनोज हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: Tehzeeb o Saqafat se saji Sindh ki mehman nawaz dharti,
5: jiski fazaon mein rachi basi hai banke mohabbat ka saaz. GAFM ki awaaz.
4: GAFM Network, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood vitamin E beads ai jadid micro beads formula awaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar sirf bindihan mein. Dark spots ke kare khatam ai liye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream, asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
4: Abhi budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क.
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6. मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6.

और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखेर आगे लेजी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बाजार शानी हा एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, वो सारी बातें जो क्या मुझसे करना चाहते हैं सब करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इस गाने के साथ ही आपको बताएंगे आगे हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून।

ओके जी प्रज्ञा में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है GFM 88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है लाइव पोस्ट जो कि पब्लिश की गई है अब से तकरीबन कुछ मिनटों पहले. ठीक है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. दो सेगमेंट्स होंगे हमारे जिसमें आप लोगों की कॉल्स को रिसीव करेंगे हम, जिसमें से हमारा पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ. जो बंदा आएगा कॉल करेगा, सुर लगाएगा, गाना सुनाएगा, वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत अच्छा बोलना जानते हों और बहुत अच्छा बोलते हों तो वो जरूर बोलें. तो जी जो लोग बहुत अच्छा बोलना जानते हो वो जरूर मुझे ज्वाइन करें बोलो तो माने सेगमेंट में. हमारा जो सेगमेंट होता है बोलो तो माने वो होता है जी 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद जब वो सेगमेंट हो रहा होता है तो उसमें एक अदर टंग ट्विस्टर मैं आपको बताती हूँ. और वो टंग ट्विस्टर जो बंदा ज्यादा सही सही बोल के दिखाता है वो विन कर जाता है उस सेगमेंट को. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे.

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलेंगे आगे और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और इसी के साथ एक और सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे। इस सॉन्ग के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपने कहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: abri.
1: Dia Saka FM. हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: yeah!

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ज वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आशी रुखसार. हमारा सेगमेंट सर लगाओ गाना सुनाओ जिसमें आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन करने जा रहे हैं. लाइव कॉलिंग नंबर है हमारा 03000113488. फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ. बजर क्या रहे, ठीक हो?
0: हाफिज सावल भाई कैसे, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ यार.
0: ओके, गाना सुनाएंगे?
1: गाना सुनाऊंगा मन का भलाई का.
0: ओके, सुनाए प्लीज.
1: इंतजार बराबर अल्लाह जब यार कोई दे या ना दिया सर अल्लाह जब यार.
0: ओके, ये इस गाने का टाइटल क्या है वैसे?
1: इंतजार
0: इंतजार इंतजार बस
1: इंतजार बराबर यार.
0: चले मैं इसको देखती हूँ, सर्च करती हूँ जी. और इसके अलावा कुछ कहेंगे
1: मेरे दोस्त है? ओके
0: जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.

0: ओके
1: अरे तमो जवान दायो अली अली बुद्धि मन

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: गए नहीं वापस।
1: पूरे मोहल्ले में बातें हो रही
0: कि वो आशिक मार खा के भी वापस नहीं गया।
2: चला जाऊंगा
0: और अगर मैं रोक लूं तो
3: और अगर मैं रोक लूं तो

रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
1: Express PM. This project is brought to you by
2: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: पाकिस्तान जो आए वजीर आजम है फील्ड मार्शल के थे जेमुन लाइन मिश्रण जो किरदार अदा कर गंबर जी गोट सताबू में कार इंजाम हेठ सोट अथा सोट नारी कतल जवाबदार सोनो बारीजो पंज सोट समीना बारीजो के गोलियों हणी कतल कयो पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो पुलिस मौजूद जवाबदार के गिरफ्तार कयो है मामले की जांच बाद केस दाखिल कयो वेंदो। हैदराबाद बदसा शहरीवार इलाके में फुलेली हवा में बजना बुड़ी पाया इतलाती रेस्क्यू टीम पहुंची सन गोला शुरू कर छी रेस्क्यू टीम मौजूद बिन जणन के बुजुर्ग इतलाबाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया है बुधा पे तो बुरी वरन में नौजवान नारी शामिल हैं। लखी गुलाम शाह में सुमरानी शाख के आबादगर जो शाखी के खाट न थियण ए पानी के खोट खिलाफ एहतजाज आबादगर मुजब गुजर टी साल का सुमरानी शाख के खाटी न थियण सब मिट्टी से भरती वही है वाह के आखिर तीन पानी न पुछण सब जमीनू बंजर थी रही है पानी पुछण ती पहुंचाया वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में नींगरी ए नारिय समेत टे जणा मुबैना तौर से अगवा वारस परेशान बाजियाब कराने जो मुतालबो तंगवाणी भरसा 10 साल निगरी मुबैना तौर से अगवा गोट मोहम्मद रहीम माछी मदान साल निगरी जीनत दी अमीर बख्श माछी के मुबैना तौर से अगवा किया वो वारसन मूजिब।

सुता पिया हुआ, खबर नए निंगरी के कड़े वक्त अगवा कर वो है। निंगरी के बाजियाब कराया वे मीरपुर बुरड़ो के गोट काबुल बुरड़ो मारणा साला नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी। नारी के चाचे काबुल बुरड़ो चया है। कैसर कोसो नारी के अगवा किया है, खेस बाजियाब कराया वे। खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी व पुरस्कार नमूने गुम वारसन के अगवा जो शक बाजियाब कराने जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: Is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.

0: ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे?
1: सही आवाज सही निकल रही, नहीं सही निकल रही.
0: मेरे ख्याल से जुकाम में जो है ना आपको ज्यादा सुर आ जाता है.
1: हाँ, सुर कहाँ लगा मैम, कहाँ लगा है, मुझे तो कुछ मजा नहीं आया जुकाम में, सुर नहीं लगा.
0: नहीं, हमें तो बड़ा मजा आया. खैर, और कुछ कहेंगे?
1: और ये कहेंगे कि मैं कल मेरी कॉल नहीं लगी 7 बजे वाले शो में. कॉल मैं मिला रहा था, हालांकि मेरे पास दूसरा नंबर भी था, दूसरे भाई का नंबर मोबाइल था उसका, तो मैं चला के बैठा था ऐसे ऐसे.
0: तो
1: उसकी कॉल ना मेरी, मैंने कॉल मिला रहा था ना, तो दूसरों की कॉलें लग रही थी, मैं कॉल मिला रहा था, पावर्ड आप बता रहा था ये क्यों.
0: अच्छा, अब ये तो मैं वाकई नहीं जानती कि ऐसा.
1: हालांकि देखो ना, मैं फोन चला के बैठा था, दूसरों की कॉलें लग रही थी, दूसरे बात कर रहे थे, जो भी है, मतलब मैं कॉल मिला रहा था, पावर्ड ऑफ सर, नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ.
0: आई लिटरली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती. और अगर नहीं लगी कॉल तो खैर कोई बात नहीं, आज लग गई. ठीक है,
1: ठीक है मैम, ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और ये थे स्वीट कॉलर सागर भाई. सुरों की कमी नहीं है इनके पास, हर चीज सुर में करते हैं. 03000 1134888. और

0: टेंशन छोड़।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हरी उदर
2: डीप क्लीन का ऐसे डायमंड ब्लीच क्रीम।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

योगी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे एक बजे तक का है. कॉमर्स और मैसेजेस की तरफ मूव करेंगे जो कि आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव हो चुके हैं. ओके जी, रिहाना खान भक्त हैं. नाउ नाइस सॉन्ग वाई फीलिंग ऑन माई हर्ट, कौन सा वाला सॉन्ग था भूल गई मैं, सॉरी. स्मार किशोर कहते हैं सिस कैसी हैं, मिस नहीं करना चाहिए, खाना पीना मुश्किल हो जाता है. हो तो जाता है. कौन याद आ रहा है आपको वैसे? नजीर खुश और सियासत मौजूद है जी, थैंक यू. आज का टंग ट्विस्टर किसने अच्छा और यही बोला है वो भी आपको बताएंगे. अच्छा, इसके अलावा गुलाम लगारी गोड भाशिम खान रिन से, शायर गाजी खान रेन, चाचा मंठार रेन, रजान फैजान अली रेन, शहजाद अली रेन, छोटी कोनेन जहरा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. महबूब मीर जट की आवाज में कसीदा सुना दें. तो मैंने सुना दिया था, ठीक है. आज का टंग ट्विस्टर किसने अच्छा बोला है वो साथ साथ आपको बताते जाते हैं जी. गाजी खान रिंग ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला था, सागर भाई ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कहा था. तो ये लोग आज के विनर्स हैं. तीसरा और किसी ने भी कहा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि किसने कहा था.

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और फाइनली इसी सॉन्ग के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत. इस सॉन्ग के साथ ही नेक्स्ट भी प्ले करूंगी, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमेशा जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिप्स अप बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार. साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, बामानी खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: वफाकी कर वजीर मोहसिन नकवी जी जमायत इस्लामी जमीन हाफिज नईम से मुलाकात, मुल्क के सियासी अमन अमान ए माशी सूरतहाल से गाल बिन्हीं अगवान पारा अमरीका ईरान माहदो खिते अलाय बेहतरीन करार। हाफिज नईम चौथ ईरान अमरीका माहदे लाइ पाकिस्तान जो किरदार हमेशा याद रखो वेंदो। घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो तो खिते में चिकटान के खात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो है। वजीर आजम फील्ड मार्शल खिते जमुन लाय नविसरन जो को किरदार अदा कर। गंबर के गोट सताबो में कारें इल्जाम हेठ सोट था सोट नारी कतल। जवाबदार सोनो बारी जो पैं सोट समीना बारी जो के गोलियों हणी कतल कयो। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मौजूद जवाबदार के गिरफ्तार कयो है। मामले की जांच बुधी पाया। इतलाफ रेस्क्यू टीम पहुंची उन्होंने गोला शुरू कर छी। रेस्क्यू टीम मौजूद बिन जन की बुधण वाले इतलाफ बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बुधा पे वो बुरी वरण में नौजवान ए नारी शामिल है। लखी गुलाम शाह में सुमरानी शाह थियण ए पानी के खोट खिलाफ एहतजाज। आबाद करण मूजिब गुजर टीह साल की खाटी नत भरजी वही है। वाह जाकर तीन पानी न पहुंचने सब जमीनू बंजर थी रहा है। पानी पुछण चक में मर जतोई खूनी तकरार जरगे की रोकियल फतवा ब जुलाई से बुधाई वेंदी। जरगे की सरपंच अलीगर महर गोस बख्श महर ए इब्राहिम जतोई के इतला कर छो। महर जतोई खूनी तकरार जरगो वी एक्वी अप्रैल से सर्किट हाउस सखर में थो। टिंदड़न के कत्ल वाले मामले से जरगे की फतवा रोकी वही हुई। सिंध मुख्तलिफ इलाकन में निगरी ए नारियों समेत चार जणा मुबैना तौर से अगवा वारस परेशान। बाजियाब करण के मुतालबो निगरी तंगवाणी भरसा दहन साल की निगरी मुबैना तौर से अगवा घोट माछी में दहन साल की निगरी जीनती अमीर बख्श तौर से अगवा किया वो। वारसन मूजिब वह सुता पाया हुआ तो खबर ना तो निगरी के कड़े वक्त अगवा किया वो। निगरी के बाजियाब कराया वे मीरपुर बुरड़ो के घोट काबुल बुरड़ो में अढ़न वर की नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी। नारी के चाचे काबुल बुरड़ो केसर खोसो नारी के अगवा किया केस बाजियाब कराया वे। खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी पुरसवार नमूने गुम वारसन के अगवा जो शक बाजियाब करण के मुताबिको फैजगंज में पंजन दिन का गुम तेरह साल की नींगर मोइन चांग जो पतो न पो। नींगर की अमड़ ए भेंडन जो पाक किताब खड़ी एहतजाज नींगर की गोला में मदद की अपील। सोनारन जो टैक्स वधायण ए कराची में सोनारन की गिरफ्तारी खिलाफ एहतजाज। सोनारन कारोबार बंद करे बाहन से कारियों पटियों बधी मुजाहरो कयो। मुजाहरीन मूजिब वफाकी हुकूमत टैक्स लगाने सबब कारोबार सख्त मुतासर थी रो है। कराची में सोनारन के टैक्स न दिन ता गिरफ्तार किया वो है खेन आजाद किया वे। आयन टंडो गुलाम हैदर में बिस्प सेंटर से डिवाइस होल्डर्स औरतन के वारसन में झेड़ो 12 जणा जख्मी। झेड़ दौरान धुरन में जो इक्वे से लठन ए कुआड़न जो वसकारो 12 जणा जख्मी थी पाया। अदलात से पुलिस पहुंची फायरिंग करे झेड़ो टारियो जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GFM 91.6
5: समाज तक जिंदगी से मोह तक जहाँ से तहत से खुशी तक जल्द से जल्द जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावत होना चाहते हैं, खूबसूरतियों को वेलकम करना चाहते हैं और हमेशा के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने जनाब इस प्रोग्राम को सुना है और प्रोग्राम को सुनते सुनते आप लोगों को इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद रहे तो ये सब कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों के बताने के लिए है और बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो होता है जनाब पूरे पूरे दो घंटों का, यानी कि ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ। तो बिल्कुल जी, इसी उम्मीद के साथ इसी मोहब्बतों के साथ आप भी मेरे साथ मौजूद रहने वाले। तो चलिए जी, प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब आप जो हैं सही जगह पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह हमने अपने काम भी कीजिए और हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्धर आली बोस, आपके होंठों पर 440 वक्त की स्माइल आने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वक्त की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आखिर से प्रोग्राम कर लेते हैं। आखिर से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब प्रोग्राम में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी नात के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम बिल्कुल जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

I love this song. इतना प्यारा गाना है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं रोज भी इस गाने को प्ले कर सकती हूँ, लेकिन आप बस बोर ना हो जाए. अच्छा तो ये हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट आपके मैसेजेस की जाने बात है. जहांगीर अली भाई हमें शिकारपुर से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाईजान, वेलकम करते हैं. वासु भाई हमें सुन रहे हैं, वासु भाई हेलो खुश आमदी. और बिलाल अली कहती है सलाम अलैकुम, अच्छी वयम माँ भी चिक्क छिकी आई कसम थी सच्ची बुदा वेलकम. नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम वेलकम. मीर बेबस कहते हैं मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे. आए हाय अलग कथा शुरू पी थे अलग कितने खत्म दी गई. अच्छा किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिर आए स्मार्ट भात आज मोबतू आए वेलकम वेरो पानी सीट थे. अच्छा बिलाल कहते हैं कि हाँ मुंह टमाटो यूज किया हुआ फेस से रिजल्ट मिलियो हुए सुठो. अच्छा सही ओके बुधायो मतलब ताकि कोई कुछ भी चाहिए तव लगाईंदा. चलो ठीक है टमाटो तो ठीक है पर अगर अड़ो टोटको हो जाए तवे बुधायो वन तव लगायो तो बाबा ये न कदा कर पे तसो तो अगलो मूको तो सही है या न छो तो अजकल मू ये भी कन था ठगियो भी हलन थी. पर तव्हां छा कंदा तव्हां सिर्फ़ जेको आहे न पंहिंजी स्किन जो ख़्याल रखंदा ऐं पंहिंजी स्किन ते उहे प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा जेके तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल हुजनि. ऐं तव्हां अगरि मार्केट में वञो था त तव्हां ॾिसंदा हूंदा बाबा केॾा मार्केट में अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जेके तयार थियल आहिनि जेके तव्हांखे कंफ्यूज़ कंदा आहिनि त हाणे मां हीउ वारो वठां या हीउ वारो वठां या ओ हो वारो वठां. हिन कंफ्यूजन खां तव्हांखे दूर करण लाइ मां तव्हांजे लाइ मौजूदु आहियां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में जीअं तव्हांजी कंफ्यूजन दूर हुजे जीअं तव्हांजो माइंड सेट हुजे त असांखे छा वठिणो आहे मार्केट में वेंदासीं त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको असांजे हिसाब वारो आहे यानी कि तव्हांखे दाणा आहिनि त तव्हांखे छा लॻाइणो आहे तव्हांखे फेयरनेस क्रीम खपे थी त तव्हांखे कहिड़ी लॻाइणी आहे तव्हांखे नाइट क्रीम खपे थी त तव्हांखे कहिड़ी लॻाइणी आहे समझो था. ऐं अगरि तव्हां पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595. ओके जी नंबर लास्ट में डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके सिटी में अवेलेबल होने चाहिए ये तमाम प्रोडक्ट. और वासु भाई कहती है सिधो प्रोग्राम जो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे न मां इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मुहर्रम जेको आहे सुभाणे खां स्टार्ट थी पियो त सुभाणे खां वठी जेको आहे न मतिलबु 5 मुहर्रम ताईं मुंहिंजो प्रोग्राम हलंदो 5 खां वठी जेको आहे न 11 तारीख़ ताईं आई थिंक सो मुंहिंजो मोकल हूंदी उन खां पोइ वरी तव्हांखे जॉइन कंदासीं.

अच्छा ए एम अंसारी कहते हैं अभी तक तो किसी की भी नहीं सुनी, बट कुछ दिनों से मुझे सिडो ने डी स्किन एंड वाइट एज के प्रोडक्ट्स यूज करने को कह रही हैं, बता तो रही हैं। अच्छा लेकिन बस दिला नहीं रही, मैं कोशिश करती हूँ आपके इस के ऊपर जो है ना वो मसला जो इसके ऊपर हम सोचते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा ज़ुल्फ़िकार अली कारती हमारे साथ मौजूद है मदीना मुनव्वरा से, आप हमारा शो सुन रहे हैं माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक अदा मुखे तमाम मुखे बेहतर सुनानो था मुंह अवहां जे चवण ते या ही तां जकड़ी गाला जका मतलब सही है। पर हाने तमाम जको है ना वाइट एज जो फेस वॉश लाजमी ट्राई करे दिस जो आई वाइट एज जी का लवली क्रीमा ना ही हणी दिस जो ता के जको है दोस्ती वारो सलाह जां दी भाईपी वारो सलाह जां दी तमा लाजमी वाइट एज जी का लवली क्रीमा ना उहा ट्राई करे दिस जो तमाम सफा चंदा बाबा पैसा वसूल प्रोडक्ट आ है एडो जबरदस्त प्रोडक्ट आ मा पान लगाईंदी आ तमा ट्राई करे दिस जो। अच्छा दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम चंदा, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसी हैं क्यूटी। एसन अरबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एसन, हालत आने खुश आयो। अच्छा वफा मुमताज अली खोसो हमारे साथ हैं, गोट रईस गुल हसन खोसो खां, मुमताज भा तुम मोहब्बतों प्रोग्राम बुध पाया।

0: अच्छा चाचा खालिद कहते आऊं तो फुल किट ऑर्डरिंग बट मीर इरफान सियाल साहब नॉट रिस्पॉन्डिंग मी प्लीज इफ ही रीड माय कमेंट्स सेंड मी. चले मैं इरफान साहब को जो है ना वो कह दूंगी कि वो आपको पूरा किट शेयर कर देंगे, आपको भेज देंगे और वो आपसे कॉन्टेक्ट भी कर देंगे. ठीक है वरियामली जतोई हमारे साथ मौजूद. कहते हैं सिद्रा आपका प्यारा शो सुन रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. और ये गुड गुड हमारे साथ मौजूद है, गुड गुड आपका बहुत शुक्रिया. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और दोस्तों को जो है ना वो मेंशन करते रहिए. सैयद बुखारी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को.
1: मन वे सुने
0: अच्छा अच्छा बच्चो अच्छा जेको तू लगाई पई हुन में जेको बच्चो हो जे थोरो दे आउं ट्राई करे दिसा. बिल्कुल मां तां के जां पर मुझे भेण आई नी हाने वो खणी वई चाहे मुख दे तू बियो वठ जा. सो मां हाने जेस ताई बियो वठा तो आउं मार्केट जेको ने थोरो घट वेंदी आं. सो मां सोचां थी त पांज लै वठन तां ज लै वठनम. ठीक आ एतरी त सखी आई हां इमाल अल्हम्दुलिल्लाह.

ओके जी, हमारे साथ हैं ये लाड़काना की शान, लाड़काना की महान, सिंध की रानी और फारूक जैसे भाइयों के सर का ताज, मेरी शहजादी बिना सिद्रा मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर जिंदगी। फारूक अहमद मीरानी फ्रॉम शिकारपुर। फारूक भाईजान बड़े दिनों के बाद हमें पैनल पर नजर आए, तो क्या बात है फारूक भाईजान, आपकी वापसी पर आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते मेरी तरफ से अली रजा मुगल, इमरान अली मुगल, अली रनो मल्हा, नदीम मंगरियो, रियाज शेर को सलाम दीजिएगा। ओके फारूक भाई, और फहा डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाब शाह, कहते सलाम अदी शो तमाम जो नाई साहे मोहब्बतों प्यारे भावन जो। और ये हमारे साथ हैं दिल रुबा, अच्छा दिलरुबा आपने गजल शेयर करी है, कहती है हाय आपी जान गजल है, फिर किसी याद ने है रात भर जगाया मुझको, क्या सजा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको, दिन को आराम है ना रात को चैन, कभी जाने किस खाक से है कुदरत ने बनाया मुझको, दुख तो ये है कि जमाने में मिले गैर सभी जो मिला है वो मिला बनकर पराया मुझको, जब कोई भी ना रहा कंधा मेरे रोने को, घर की दीवारों ने सीने से लगाया मुझको, अब तो उम्मीदें वफा तुमसे नहीं है, कोई फिर चरागों की तरह किसी ने जलाया मुझको। वाह वाह वाह वाह, बहुत ही एक अच्छी सी गजल आपने दिलरुबा हमें शेयर कर दी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो शायद नबील शौकत की आवाज में गानो हुयो, इतरो भी गजनी ना यार।

अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के 30 करोड़ डॉलर देने वाली खबर की फेक न्यूज करार दई छो। डेमोक्रेट्स से कूड़ी खबर फैलाने जो इल्जाम, समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में ट्रंप है ईरान कदे भी एटमी हथियार ठाण से राजी थी वो है। अमरीका ईरान विच में मुआदे से सयू भी थी चुकी हैं। जुमे के दिन दशकत कर न कर बाबत फैसलो ना कर जीडी वेन्स तकरीब में जरूर शिरकत कन् नायब सदर जीडी वेन्स सदर ट्रंप जुमे का पैर मुआदो है वो जारी कर सके तो 150 फीट बदल रस्मी मुआदो है। तेहरान खिते में अमून इस्तकाम यकीनी बढ़ाई एटमी हथियार भी नठा। ईरान जंग अमरीकी साख के खत्म कर छो। इसराइल के जवाल जो अमल भी तेज थी वो। ईरानी कदस फोर्स के कमांडोज इस्माइल चांद है शदीद दबाव वे तबाही ए संगीन हमलों बावजूद मजम्मती मोहर को ना हटो। जैसवा मुखालिफ को हटने से मजबूर थे। दुनिया हिजबुल्लाह की मामूली ताकत में की है हकीकी ताकत अना घनी है। ईरानी फौज है तो दुश्मन मुआदे की भनकड़ी कई तो तकड़ो ए सख्त जवाब दिनों वो। ईरानी फौज है तो दिफा लाय तैयारी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ हेठ गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर इजलास। वजीर आजम की शमसी तवानाई मनसूबो जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो जीबी लाइ शमसी तवानाई जो समूरो खर्च वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी जिन जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम से मुलाकात। मुल्क के सियासी अमन अमान ए मुआशी सूरतहाल से गालू। बिन्हीं अगवान पारा अमरीका ईरान मुआदो खिते लाइ बेहतरीन करार। हाफिज नईम चयो तो ईरान अमरीका मुआदे लाइ पाकिस्तान जो किरदार हमेशा याद रखियो वेंदो। गरु वजीर मोहसिन नकवी चवा खिते में छिकताण के खात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो है। वजीर आजम फील्ड मार्शल खिते अमन लाइ नवेसरण जोगो किरदार अदा कयो। वरी वजीर चितारत हेठ वसीलन में वाद ए टैक्स उगाण बाबत इजलास। एक्साइज सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ए नाणे खाते की कारकर्दगी जायजो वरतो वो। मुरादरी शाह पारा टैक्स उगाण वाले निजाम आसायत पायण की हिदायत। वरे वजीर चयो तो वसीलन में वाद अवामी फलाह ए तरक्याती मनसूबों बेहतर खिदमत की फरहमी लाइ अंतर है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तोहन अदालत केस की बुधनी। कमीशन के चेयरमैन सेक्रेटरी ए कंट्रोलर अदालत में पेश। टिन्ही ऑफिसर अदालत की आगाही लिए चो दरख्वास्त गुजार जो इंटरव्यू वठण लाइ तैयार आयो पर खसूसी कोटा से जाय घट आन। खाली जाय बाबत फैसलो करण हुकूमत जो अख्तियार है। अदालत की दरख्वास्त गुजार का इम्तिहान वठण की हिदायत। हुकूमत के खसूसी मानों की पोस्टों बाबत कोटा से अंदरसानी करण जो हुक्म।

0: मूजिब शुरूआती जांच मूजिब जोड़ो एक बे के पसंद कन्द है वधिक जांच जारी है। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ खातों के मुलाजमन जो एहतजाज पगारों में महंगाई के हिसाब से बात करने के मुतालबो सिंध के सरकारी खातों के मुलाजमन मुतालबन की मंता है गड़ियल एहतजाज किया। मुलाजमन तमाम घनी है हुकूमत पगारों में सब सैकड़ो वाद करे। चक में महर जो ही खूनी तकरार के जलगे के रोकियल फतवा ब जुलाई से बुधाई वी जलगे की सरपंच अलीगर महर ए गौस बख्श महर इब्राहिम जतोई के इतलाह कर छो। महर जो ही खूनी तकरार जो जलगो भी एक्वी अप्रैल से सर्किट हाउस सखन में थन्द टिन जड़न से कतल वे मामले जलगे की फतवा रोकी वही हुई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नीगरी ए नारियों समेत चार जना मुबैना तौर से अगवा वारस परेशान बाजियाब करने जो मुतालबो तंगवाणी भरसा दान साल नीगरी मुबैना तौर से अगवा गोट मोहम्मद रहीम माछी मां दहन साल नीगरी जीनती अमीर बख्श माछी के मुबैना तौर से अगवा किया वो वारसन मूजिब सुता पाया हुआ तो खबर ना नीगरी के कड़े वक्त अगवा किया वो है नीगरी के बाजियाब कराया वे। मीरपुर बुल्लो के गोट काबिल बुल्लो मां 18 साल नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा नारी के चाचे काबिल बुल्लो चाहवा तो कैसर कोसो नारी के अगवा किया है खेस बाजियाब कराया वे। खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी भी पुटसा नमूने गुम वारसन के अगवा जो शक बाजियाब करण जो मुतालबो फैजगंज में पंजन दिन का गुम 13 साल के नींगर मोइन चांग जो भी पतो न पो नींगर की उम्र ए भेनरों जो पाक किताब खड़ी एहतजाज नींगर की गोला में मदद की अपील। कुंडी भरसा बिन धारदार वाकियन में औरत नीगरी पारा मुबैना तौर से फाव खाई जिंदगी जो अंत आने छो घोट अलारी नो खोसो में 8 साल आ 8 बार की माओ नजीरा खोसो मुबैना तौर से घर की लांडी में फाव खाई आपघात कयो। बिस्टा शाख में 14 साल की नीगरी चौथी भील मुबैना तौर से घरू तकरार तां फाव खाई जिंदगी जो अंत आंदो। सकरन में सुनार जो टैक्स बधायण ए कराची में सुनार की गिरफ्तारी खिलाफ एहतजाज सुनारन कारोबार बंद कर बहन से कारियों पटियों बधी मुजाहरों किया। मुजाहिन मूजिब वफाकी हुकूमत टैक्स लगाने सबब कारोबार सख्त मुतासर की रहा है कराची में सुनारन के टैक्स न देने से गिरफ्तार किया वो है कें आजाद किया वे। टंडो गुलाम हैदर में बिस्क सेंटर से डिवाइस होल्डर्स ए औरतन के वारसन में झेड़ो 12 जना जख्मी झेड़े दौरान धुरन जो एक बे लथन ए कुआड़न जो वसकारो 12 जना जख्मी थी पाया इतला से पुलिस पहुंची फायरिंग कर झेड़ो टारियों जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल किया वो। सिंध अलबेली शायर हसन दरस के विछोड़े के 15 वरिया वहामी व्या शायर अदीबन सहाफिन के टंडोला यार में हसन दरस की आखिरी आरामगाह से हाजिरी गुलन की चादर चाढ़े दुआ घुरी। शायर ने अदीबन मूजिब हसन दरस सिंध जो तमाम बड़ो शायर हो तो वर्सी सरकारी सतह से मल्हाई वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
3: सखर शिकारपुर रोड ते
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
3: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
3: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
3: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज और 600 गज
4: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
3: साफ मिठो पानी
4: बिजली गैस
3: 24 कलाक सिक्योरिटी
4: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल और सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेझो है
3: जो रिहायश और सीड़पकारी बिन्हीं लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
4: अज ही पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
3: फौरी कब्जो और फौरी रजिस्ट्री
4: कॉन्टेक्ट
3: 03009317252
4: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Schemes।
5: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM की आवाज
5: GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ami Budhopia, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
4: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujho to.
3: Sindh Jo Awaaz. मुदंदारा
1: है कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या लगाएं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप क्रीम का इस्तेमाल करना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को पता होना चाहिए कि जनाब वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट फार्मुलेशन से तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के चेहरे के डार्क सर्कल्स हों, जितनी भी ऐसी चीजें हों जो कि आप लोगों को अपने चेहरे पर अच्छी नहीं लगती वो रिमूव कर देता है और उसके साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट देता है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो अगर आप भी जल्दी में रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, वो रिजल्ट जो कि आप लोगों के लिए सेफ भी हो, यानी कि तमाम के नुकसान भी न पहुंचाए, तो तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सको था, जो फुल डॉक्टर जी निगरानी जी अंदर तैयार थे हली प्रोडक्ट आए जे मत तार सुना तो डॉक्टर जो ही फोटो लगल आए यानी कि तमाम जी या जेका टेंशन आना वो खत्म करने लाए तो बाबा जेके प्रोडक्ट हुंदा है नो स्किन के खराब करना है न बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका है ही तमाम जी स्किन के जेको ना खराब न करनी बल्कि ना सोनो बनाए चली दी। सो द डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो आपकी जल्द की जो है ना वो खूबसूरती को मेंटेन करती है, आपके जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद करती है। और चेहरा अगर आपका जो है ना वो खराब हो चुका है, आपके चेहरे पर निशानात आ चुके हैं या फिर आपके जो आंखों के हल्के वो बढ़ चुके हैं, तो भाई आपके चेहरा जो है ना वो इतना अच्छा हो जाता है, आपका चेहरा ज्यादा जो है ना वो साफ हो जाता है, रोशन हो जाता है, दिलकश हो जाता है और आपको ये एहसास होता है कि भाई खूबसूरती में ना आपके इजाफा होता जा रहा है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जल्द जो है वो कुदरती जो है ना वो खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाती है और आप ये महसूस करते हैं कि हम तो नेचुरली हसीन होते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये जो आपके चेहरे पर डलनेस आ जाती है या आपके चेहरे पर निशानात आ जाते हैं ये चीजें जो है ना वो उसी वजह से आती है जब आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं। आपके चेहरे को जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें आप उन्हें दे ही नहीं पाते हैं, तो जब आपके चेहरे को वो चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपके चेहरे को जरूरत है, नीड है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो खूबसूरती की तरफ जाती जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप डी स्किन फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बता दी चलूं कि एक ऐसे तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड है जनाब, जिसको जो है ना आप अगर अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपके चेहरे की स्किन रूखी सूखी लगती है, तो आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है, ग्लोइंग रहती है, आपकी चेहरे की स्किन क्लीन रहती है और इतनी साफ और शफाफ लगती है कि आप खुद ही कहते हैं जनाब कि हमें तो भाई मजे आ गए हैं डी स्किन फेस वॉश के इस्तेमाल से। तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, खवातीन, मर्द हजरात, हर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप डी स्किन फेस वॉश लगाते हैं डी

ब्यूटी क्रीम लगाती तो आप लोगों को ऐसे रिचनेस सा एहसास होता है कि वाकई असां को एड़ो जबरदस्त प्रोडक्ट लगायूं था जेको तमा जी स्किन के जेको ने सफा ही खूबसूरती सा मालामाल करे छदी हो तो ता लाजमी ट्राई करी दिस जो उन का अलावा जेको आ त फेस वॉश तमा डी में 2-3 दफा लगाए सगो था ओके जी बाकी अगर तुम नाइट क्रीम लगाना चाहते तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के राज टाइम इस्तेमाल कर सको था ही आहन प्रोडक्ट जी तुम इजीली अप्लाई कर सको था तुम जी स्किन जलाए तमाम घना सेफ आहन तुम लगायो बाबा पांजी खूबसूरती के वधायो न का अलावा जेको आ तो अगर तुम चाहो था तो तुम जी एरिया में अवेलेबल होजन गुर्जन तो तुम उन ला डायल कदा 03-15-799-0595 ओके जी मोहम्मद का सवाल पूछो आ तो करें तमा ये कयो आ तो बाबा के चवण ते कोई एड़ो टोटको अप्लाई करी छड़ियो जेको तमा जी स्किन के नुकसान पहुंचाए चुको हो जे आई तमा यो सोचिंदा आयो त हन एक मानो ते यकीन करने जे बावजूद तमा जी स्किन खराब थी वई आई उन मानो खा पोई न जे मानो जे टोटके खा पोई तमा के भी मानो ते यकीन नायो करे सकंदा आई जदे एड़ो सीन असा जी जिंदगी में थी वेना असा के चवण ते का भी चीज कंदा आयो कोई भी एड़ो फार्मूलो लगाईंदा आयो कोई भी एड़ी जेका न क्रीम लगाईंदा आयो कुछ भी एड़ो लगाईंदा आयो जेको असा जी स्किन जलाए सही साबित न थींदो आहे त पोइ असांखे न सभिनी प्रोडक्ट खां जेको आहे इहो नफ़रत थी वेंदी आहे त न बाबा असां इहे न लॻाईंदासीं छो त तव्हांखे इहो हिकिड़ो ज़हन में चीज़ सेट थी वेंदी आहे त बाबा सभु चीज़ूं अहिड़ियूं ई हूंदियूं आहिनि त ईअं न आहे हूंदो जेका चीज़ तव्हांजे चहिरे ते सूट नाहे कंदी त उन जे पोयां कोई रीज़न हूंदो कोई कारण हूंदो जंहिं वजह सां उहा शइ जेका न तव्हांजे चहिरे ते रिज़ल्ट न ॾिनो हुजे त अगरि तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो था कोई बि चीज़ त तव्हां उन चीज़ खां वाक़िफ़ हुजो त हीअ कहिड़े तरीक़े सां तयारु थियल आहे हीअ ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे न आहे मर्द मायूं लॻाए सघनि था न त इहे जॾहिं सभु चीज़ूं तव्हां ॾिसी वाईसी पोप उहा चीज़ अप्लाई कंदा त पोइ तव्हांखे हिकिड़ो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली सघे थो सो तव्हां लाज़मी पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो जी स्किन ब्यूटी क्रीम्स ऐं जी स्किन फेस वॉश

वरी वार खोलण जी ॻाल्हि न कयो, गर्मी ॾाढी इहो पॉसिबल ई न आहे मुंहिंजे ख़्याल में। चलें जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप कहां से हमें सुन रहे हैं। यहां पर पैनल की जाने बातें तो आके बड़े मैसेजेस जमा हो चुके हैं और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं चाचा खालिद जुड़े, जो कहते हैं बेटा सिद्धू अस्सलाम वालेकुम, सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, नूरजहां की आवाज में है, बिल्कुल आपको लगाते हैं, ये गाना सुनाते हैं। और ये हमारे साथ है मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है, इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ है फारूक मीरानी भाई, क्या कहते हैं, बेस्ट इंसान का बेस्ट शो है, वेलकम आपको दिल से माई क्वीन सिस्टर सिद्रा मुस्कान, थैंक यू सो मच प्यारे भाई जान। और ये हमारे साथ फारूक भाई कहते हैं कि बेटा मैंने आज तक किसी के कहने पर कोई चीज यूज नहीं की है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग ढूंढ लोगी, नहीं नहीं गाना आपका मिल गया है, इस गाने के बाद आपका गाना लगाएंगे। और हमारे साथ हैं जी ये असलाम

हा भई हाणे वाह घुरे न घुले पर फर्क़ पवे थो हिन ॻाल्हि खां ज़रूरी आहे। अरीबा हमारे साथ कहते हैं वो आप ही गाना तो लगाए गानों हलायूं था बाबा तांजो गाने विंदासी। और ये हमारे साथ फारूक भाई कहते मेरी शहजादी बहना ये मंजू सगरानी का गाना तो लगाइएगा बिल्कुल बिल्कुल भाजला गानों हलाइंदासी। और ये मौजूद है सलाम अलैकुम सिद्राबाद से हमारी सारी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है बहुत शुक्रिया आपने नाम तो लिखा ही नहीं अपना तो खुश आमदीद कहते हैं। वोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरीखा कुर्बान अली खास के लिए भाषा सगर मौजूद आए कुर्बान बात आज मोहब्बतों आए। और ये हमारे साथ है शेर अली फरहान अली जमाली नवाब शाह से प्लीज प्ले नजफ अली ओके अच्छा इरम कहती है अच्छा मेरी दिलबर दोस्त आप हां जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्राबाद जी हमारी सारी फैमिली आपका शो सुन रही है शहबाज जमाली वलद मिस्री जमाली नवाब शाह चले शहबाज भाई आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ और आपका मैसेज ये जो ना अभी मुझे पूरा होकर मिला है और आपने एक ही मैसेज को बहुत मरतबा कॉपी पेस्ट कर दिया है सो थैंक यू सो मच पैनल पर जो ना सिर्फ आप एक मरतबा मैसेज कर दिया।

नहीं, बहुत ही प्यारा गाना जो कि शमन की आवाज में हमने सुना। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि मैडम नूरजहां की आवाज में होने वाला है, तो ये गाना भी हम सुनेंगे। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अल्ताफ बलो जाग जानी चाचू, कहते हैं प्लीज प्ले अनवर विस्तरो नकेद करो मैं कू डेडिकेट अजरा को सो जोयो बलोच एंड यू। ओके ओके आई विल ट्राई। ओके जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं मुझे बताइए। जैसे अब्दुल अमर भाईजान मुझे बता रहे हैं कि बाजी मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल भाईजान इस्तेमाल कीजिए, थैंक यू। और हमारे साथ इरम कहती आप ही आपकी नहीं, वो पड़ोस में तो नहीं है लेकिन उसके मियाँ इतने अच्छे हैं कि वो जब भी कहती है उसको तो वो लेकर आते हैं उसके माइक। आजकल तो वो खैर जो है वो बहुत कम आती हैं, और फिर वो कम आते हैं तो उसके बच्चों की बड़ी याद आती है। तो ये है, जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जा रही तो वो वैसे ही अब माइकी आना जो ना उसने कम कर दिया है, तो पता नहीं भाई वो अपनी जिंदगी में गुम होती जा रही है। तो दुआ किया करें उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं पाक आर्मी से आप हमारे साथ हैं। स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना लगाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ जी।

0: अच्छा ये गाना पता नहीं क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया, मैं वरी सोच रही थी कि ये गाना आपको एंजॉय करने देते हैं। चलिए ये गाना था ही खैर इतना, और इसके साथ साथ ये गाना मैंने लगा लिया है। टाइम हमारे पास आके थोड़ा सा बचा है, मैं वरी इंतजार कर रही थी कि भाई हम ब्रेक की जानेब जाएंगे तो सुकून से आपको गाना सुनने देते हैं। और आजकल जो है आजकल ना जाने क्या हुआ मुझे,
1: लगता ये समा है नए लगे ये आसमां ज़मीरी आज था, न जाने हुआ क्या मुझे।
0: ओके जी, तो जरा हम ढूंढते हैं कि ये क्या वजह है कि आजकल हमें क्या हो चुका है। यहाँ पर जो है वो आप जरा ये गाना सुनिए, गाने के बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरत होती रहिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मैक्रीनो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीएफएम 91.6
4: हियरिंग करने से जो है ना हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक जाएगी और जितनी ज्यादा लोगों तक जाएगी तो जाहिर सी बात है उतने लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं। आप लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है जो प्रोडक्ट ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते बल्कि हमेशा आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखते हैं।

0: की सहाय है,
1: सुरभि सहाय बो बाबा
0: जान चाहे कुर्बान आए तो सामने भाई,
1: बस निभा जरूरी यार समझो था। अगर कंडीशंस क्या है ये नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि भाई जान आप इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, समझ रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो डायल कीजिए 03-15-799-0595। जल्दी जल्दी से ना ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके गोठ में भी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये अवेलेबल होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा नंबर के ऊपर तो आप मुझे बताइए ना, हम शिकायत लगाएंगे आप लोगों की, समझ रहे। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते आते हैं तो लाजमी कीजिएगा भाई, एडो जबरदस्त प्रोडक्ट आना, अगर तुम एक दफा इस्तेमाल करे दिसना ना पहुंचाना वाह वाह सिद्रा पाटी सफा सही पी चाहिए। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो वाइटामिन ई बीट्स ए माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन से तैयार थे है, जिनके इस्तेमाल से तुम्हारी खूबसूरती जगह अना वधंदी वेंदी, तुम्हारी चेहरे की खूबसूरती जगह किथे गुम थी वही है तो वह तुम्हें वापस मिली वेंदी, तुम्हारे चेहरे के निशान आन एक प्रॉब्लम है जी भी मसला है सब खत्म थी वेंदा, तुम्हारी स्किन थी वेंदी गोरी चिट्टी। ओके जी, सो जरूर तुम ट्राई करी दिसो जी तुम्हें सफा वी आई पी रिजल्ट मिले, समझो था। उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तक डी स्किन फेस वॉश भी मिली रो है जो तुम किथा भी वही पानी करीबी जनरल स्टोर तक परचेज कर सो हाँ तो हर जगह से अवेलेबल थी वह ही प्रोडक्ट, तो तुम लाजमी अवेलेबल थे तो उतना वही परचेज क्योंकि ना अवेलेबल तो नंबर से लाजमी डायल करो नाबतों करो, ठीक है। उनके दस तो तुम किथा बुधो पाया प्रोग्राम किथे किथे ही प्रोडक्ट अना तीन अवेलेबल न थे। ओके सो प्रोग्राम जो लास्ट लिंक है, लास्ट लिंक में असा प्यारा मानू मतलब इंतजार कन प्या जी वेचारा शुरू का वी सुबह का वी वेठा असो गानो हलो तो बिल्कुल सभी जो गानो हलाइंदी बाबा, मुझे यह कोशिश होंगी तभी जहाँ सॉन्ग्स ट्राई लगायू लिस्ट में तभी जहाँ गाना बुधू सब हैप्पी हैप्पी रहो इंजॉय कर जिंदगी के तो सभी जहाँ गाना जो अस बुधंदी। सो एक बो गानो है जो असि लिस्ट में मौजूद है जो शायद बबर की आवाज में थियण वो है, शायद बबर की आवाज में ही वो सॉन्ग बिलाल फरमाइश कई शायद असें।

पाछा मूं न छा कयो मूं पोस्ट के जेको आहे न रिफ्रेश कयो रिफ्रेश करण जी वजह सां खोड़ तव्हांजा जेके कॉमेंट आहिनि मथे भॼी विया त जंहिंखे लॻे थो त हीउ मुंहिंजो इम्पोर्टेंट मैसेज जेको बाजी सिद्रा कोन पढ़ियो आहे त तव्हां काइंडली महिरबानी करे मूंखे वराए त शेयर करे छॾियो जीअं असां उहो प्रोग्राम में एड करे सघूं समझो था ऐं उन खां अलावा तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो था मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक एक दिन ऐसा हुआ था मेरे दोस्त के कहने पर मुल्तानी मिट्टी फेस पर अप्लाई कर ली थी फिर घर के सारे फर्द डर गए और इतने डरे कि अब तक घर वालों के प्यार से महरूम रहा हूं भाई मुल्तानी मिट्टी मेरे फेस पर भी सूट नहीं करती है पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो फेस के ऊपर अच्छी होती है ये कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके चेहरे पर वाकई रिजल्ट देती हूँ लेकिन ज्यादा लोगों के चेहरे पर नहीं देती है तो इसका मैं भी कुछ लोगों को ये नहीं कहूंगी कि भैया लगाए अच्छी चीजें ना बाबा ना लगाए मुंह ते तो असर कोन करे तव्हांजे चेहरे ते अगरि करे थी त पोइ तव्हां करे सघो था पर सुठो इहो आहे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिजो समुझो अच्छा उहो ॿियो गानो चलो मां बि इहो सम्झा पई त ॿियो गानो हूंदो पर अगरि मूं इहो लिखी करे जेको तव्हां लिखियो न उहो साॻियो लिखी करे मां यूट्यूब खे ॾिनो त हुन मूंखे हे वारो गानो कढी ॾिनो सो मां ही वारो हलाए छॾियो मूंखे लॻो मथां शायदि मां मुंहिंजो दिमाग़ थोरो ग़लति सोचींदो हुजो पर तव्हां सही था चओ त आईंदा तव्हां मूंखे जेका न लिंक शेयर करे छॾींदा कयो हुन खां अलावा सनावल बिरोही हमारे साथ ही और कहते हैं आपका शो पहले साइलेंट होकर रेडियो पर सुन रहा था अब कॉमेंट करके शामिल भी हो रहा हूँ व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में वेलकम करते हैं आपको जनाब हम भी आपको दिल से वेलकम करते हैं और चाचा खालिद आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया है बहुत शुक्रिया उसके लिए मुजाहिद बुज़ार कहते हैं जादू भरी तेरी नजर अॼु तव्हांजे गाने के जेको आहे न थोरी मोकल कराई से असफा खोड़ो हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं आकाश अली हमारे शो सुन रहे हैं भाईजान को वेलकम करते हैं

0: खट्टा।
1: हाँ जी ये गाना भी बहुत अच्छा है वाकई। ओके जी, ये हमारे साथ है फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं प्यारी को। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। दीदी सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को। ओके जी,

और फजील आपका जो ये जे वर्ड वाला मैसेज ये मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। और हमारे साथ मौजूद दीदी हमारी प्यारी लुबी कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सजो जानी, क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ हूँ। तमाम बेहतरीन शो और नाइस सिंधी सॉन्ग और सजो कोई भी सॉन्ग मेरे नाम तो करो, हाजिर हाजिर बाबा। और कहती है भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज, हाँ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज चेंज हो गई और मैं मानती हूँ मेरी आवाज चेंज हो गई, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि मोटी हो गई, कुछ कह रहे हैं पतली हो गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है ये तो मैं भी जानती हूँ। चलें अच्छा है या बुरा ये तो आप ही बताइए। बस अब जो है सो है, कुछ चीजें वाकई ऐसी होती ना जिनके ऊपर हमारा अख्तियार नहीं होता और वो हो जाती तो बस हो ही जाती है। तो ये मेरी आवाज है जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कि ये मैं ऐसे चेंज खुद करती हूँ, खुद नहीं करती नहीं हूँ बल्कि ये हो जाती है। तो ये जो है ना वो बस ठीक है, आप रहने दें इस बात को। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं सही है, वो गाल करो जी का फायदे जी।

वाह वाह। अच्छा शहबाज जमाली नवाब शासी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुलरी का खालिक लाशारी कहते हैं, अंबर खा मिठी यदी चाय पिया पयो शो भी बुधा पयो सलाम कुर्बान खास के लिए ओके प्यारा भा मोहब्बत हूँ तमाम जो जान जानी चाचू हमारे साथ हैं और आपने सेकंड गाने की फरमाइश करी, यहाँ पर पहला गाना नहीं आपका प्ले हुआ बहुत शुक्रिया। और आपने डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम डॉक्टर समीना आमिर ओके जी। और इमरान भाई कहते हैं कि बाजी जमाने वारा छा भी चवन तवाजी मर्जी हलाईंदा सी बिल्कुल तवा मुझी मर्जी हलायो तेज स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो मां तांगे कदे भी गलत मशवरो न दीना मियो ता भले मुखा लिखराय बेटो अगर मां तवाजी स्किन जी जको ना फिकर कयां दी तो तवा के भी थोड़ो पांजे चेहरे जो ख्याल करन घुरजे आई तवा के जेके प्रोडक्ट बुधाया वने था उनन के थोड़ो तां ट्राई करे दिसो ट्राई करना ता तांगे खबर पंदी ना तो वाकई ही प्रोडक्ट कम जाए तो तां ट्राई करे दिसो ओके जो न खा अलावा सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाब शाह से कहते हैं सॉन्ग लगाइए ममताज मोलाई का, ममताज मोलाई जरा छुट्टियों पर गए हैं। अच्छा शहबाज जमाली भाई आपने गाना लिखा है चले मैं कोशिश करूंगी आपका गाना लगा दे काशिफ अली जमाली हमारे साथ हैं, काशिफ भाई आपको वेलकम कर देते हैं। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन वारन जो शैम्पू भी अवेलेबल आहे न सिर्फ फेस वॉश ऐं क्रीम आहे बस द प्रोडक्ट अगर तव्हां इहे लॻाईंदा सुठो रिस्पॉन्स उन्हनि खे मिलंदो त पोइ फेस वॉश त आहे पर हुन सां गॾु जेको ॿिया प्रोडक्ट जेके तव्हांखे नीड आहे उहे सभु ट्राए कंदा तव्हांजे लाइ ठाहींदा सही आहे इहे त लॻायो जेके ठाहिया अथऊं

अच्छा वरियाम अली जतोई कहते हैं सिद्रा आज सारे सॉन्ग्स आपने बेस्ट लगाए, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल कहते हैं कुछ जख्म आंखों में आंसू नहीं रूह में खामोशी छोड़ जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अली मोहम्मद भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच।

अच्छा मैं खुद ही सोच रही थी ये वाला गाना जो है वो इतना मतलब अच्छा है, इसके अंदर म्यूजिक इतना प्यारा है, लेकिन ये वाला थोड़ा लाइट वर्जन है, तो मैं खुद ही सोच रही थी कि वो वाला लगाती तो अच्छा था, लेकिन मैंने जब देखा तो कुरतलेन की आवाज में यही वाला गाना मुझे मिला, तो फिर मैंने ये वाला लगा लिया। मतलब काफी एक अरसा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो कि मतलब इतने गाने सुनता था, मैं इतनी गाने सुनती थी, मतलब कितने ही पुराने गाने आ क्यों ना देख लें, कितने नए वाले गाने क्यों ना, मैंने सारे गाने सुने हुए थे, लेकिन आजकल एक ऐसी मेरी जो है ना वो फितरत हो चुकी, मेरा एक ऐसा मिजाज हो चुका है कि मैं गानों से इतना दूर भाग रही हूँ, मैं शो में गाने लगाती हूँ, गाने आप लोगों के साथ सुनती हूँ, अदरवाइज मेरी जिंदगी में गानों का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो ये है कि मुझे नहीं आजकल गानों की समझ आ रही, जो बस आप बोलते हैं वो मैं लगा लेती हूँ, यही चीज है। अच्छा किशोर भाई कहते हैं यदि मुंहिंजी कंपनी जे बिल्कुल साम्हूं लाड़काणे जो बस ईंदो आहे, यकीन कयो सुबुह कंपनी अचां थो, बस ॾिसी तूं यादि ईंदो आहे, 5 बजे वापसि वञां थो तॾहिं बि तूं यादि अचीं थो, हाणे अदा बस हटायां या कंपनी छॾियां, तव्हां कुझु बि न कयो, यादि अचां थो सुठी ॻाल्हि आहे, बहाने तव्हां रोज़ प्रोग्राम में अचो था।

0: क्या बात है जी, प्यारा गाना। और अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों के बाद। बिल्कुल जी, बहुत अरसे के बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको वेलकम करते हैं। ओके जी,
1: तू मर जाए।
0: अच्छा, इस गाने की फरमाइश थी, ये बहुत प्यारा गाना है।

बहुत ही प्यारा गाना आप सुन रहे हैं। और किशोर भाई ने एक शायरी भेजी है, लिखते हैं कि एक रात एक बात लिखूंगा, एक रात एक बात लिखूंगा, तुझे मेरे साथ लिखूंगा, बड़ा सा चांद और ठंडी हवाएं, फिर तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगा, हकीकत में तू कभी मिलेगा या नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, मेरी किताब में सब मेरी मर्जी का होगा, तुम सो जाओगे जब मैं दिन को रात लिखूंगा, एक रात एक बात लिखूंगा, तुझे मेरे साथ लिखूंगा।

हा अनवर भाई सही था चो वैसे माँ नंढपण में सोची नहीं हम तो मां वडी थी जल्दी वडी थी मैंने बहुत कुछ करना लेकिन अब जब बड़ी हुई हूँ तो कहती हूँ कि भाई नंढड़ा भला होया सी जिम्मेदारियों ने जो है ना वो इतना मतलब उदास कर दिया है। जिंदगी ऐसे चल रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या है लाइफ में क्या थे क्या हो गए हैं। लेकिन सही है भाई हर चीज में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। और अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हो चुका है कि आप लोगों से हम इजाजत लें। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो मुलाकात है वो कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है प्रोग्राम में। सो अपना इन्ना शाला ख्याल रखिएगा और कहीं पर कोई गलती हो गई है तो हम माजरत ख्वाहें। कोई भी ऐसा लफ्ज कह दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इस्तेमाल करते रहिए।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे
5: ₹96.76 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। ट्रांसपोर्ट खाते लाए 7 अरब। करोड़ रुपया रखने की तजवीज। आपाशी खाते लाए 3 अरब 80 करोड़। वक्स ए सर्विस खाते लाए 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाए 40 अरब 86 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। सिंध नए माली साल 2026-27

गिरफ़्तारी न कर रहा आहियूं। मुंहिंजे ख़्याल में थियो आहे अमरीकी सदर ट्रम्प जे कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानीअ सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। अमरीकी सदर चयो त मुंहिंजे लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि ईरान वटि एटमी हथियारनि जो न हुजण आहे। ईरान जंग अमरीकी साख खे ख़त्म करे छॾियो। इसराइल जे ज़वाल जो अमल बि तेज़ थी वियो। ईरानी कदस फोर्स जो कमांडर इस्माइल कानी चयो आहे त शदीद दबाउ, वॾे तबाही ऐं संगीन हमलनि बावजूद मज़ामती मोर पोइते नाहे हटियो, जंहिं सां मुख़ालिफ़ पोइते हटण ते मजबूर थिया। दुनिया हिज़बुल्ला जी मामूली ताक़त ॾिठी आहे, हक़ीक़त ताक़त अञा घणी आहे। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दुश्मन मुआदे जी भंगकड़ी कई त तकिड़ो ऐं सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दिफ़ा लाइ तयारियूं जारी रहंदियूं।

ईरान ऐं अमरीका में मुआहदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वकार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सफ़ारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चवैत पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारतेर गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवनाई मनसूबे वारो इजलास। वज़ीर आज़म शमसी तवनाई मनसूबो जल्द मुकमल करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त जीपी लाइ शमसी मनसूबो जो समूरो ख़र्च वफ़ाकी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। वफ़ाकी गरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जी जमायत इस्लामी जा मीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। मुल्क जी सियासी अमन अमान ऐं मुआशी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां अमरीका ऐं ईरान मुआहिदो खिते लाइ बहितरीन करार। हाफिज़ नईम चयो त ईरान अमरीका मुआहिदे लाइ पाकिस्तान जो किरदार हमेशा यादि रखियो वेंदो। गरु वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त खिते में छिकटाण जे ख़ात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो आहे। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल खिते जे अमन लाइ न विसरण जोॻो किरदार अदा कयो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

अगर कोई आपका बहुत ही प्यारा आपका करीबी आपसे मुसलसल झूठ बोल रहा हो जबकि आपको सच्चाई मालूम हो, इस मौके पे आपका क्या रद्द अमल होगा, ये बताने के लिए

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई बने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कर गैर जरूरी तौर ते बाहर न वन
2: की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GFM की आवाज।
2: GFM नेटवर्क सिंध की आवाज। शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादी मेहरान सिंध की एक और पहचान।
2: GFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन।

0: मेरा
1: फैन। White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस

कर्ता गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपयनि जे कट लगाया वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब रुपया करण जी तजवीज़। निच सूबाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। नए माली साल में ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुॻो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ डि॒नी वई। सूबे जो गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। नए माली साल तरक़ियाती बजट में नई स्कीम शामिल न करण जो फैसलो। सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 64 अरब रुपयनि जी तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो कातो लॻायो वियो आहे। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो आहे।

जी आपने बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ साल में 13 महीने होते हैं। इस वक्त वहाँ 2016 चल रहा है, हमारे यहाँ 2026 है, जबकि उनके यहाँ साल 2016 चल रहा है। आपको मालूम है उस कंट्री का, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम?

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियार FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: घर पे GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बजट में छा हूं दो KTN न्यूज सिंधी बजट जा तफसील हद करे वरता। गुजर वाली साल जी भेट में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपयन जो कट लगायो वियो। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपयन मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज। निज सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपयन मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज डिनी वई। जिले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपयन जो कट लगंदो। नए माली साल में जिले तरक्याती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज डिनी वई। सूबे जे गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज। नए माली साल जी तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करण जो फैसलो। सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउन लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जूं तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो काथो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जी नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99.74 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70.94 अरब रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। सिहत खाते लाइ 17.43 अरब ऐं तालीम खाते लाइ 25 अरब तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। सिहत खाते लाइ 17.43 अरब ऐं तालीम खाते लाइ 25 अरब 86 करोड़ रुपया रखण

अमरीकाना हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम बर्पा करे छॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी कतरी अमीर तमीम बिन हमद अलसानी सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। सदर ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो नाहे थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे, लबनान जंग मामूली रक़रार आहे। इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। अमरीका ईरान में का बि सीड़पकारी न कंदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल माहिदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो माहिदे जी भरखरी हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। माहिदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती माहिदे ते बाज़ाबता तौर अमल जी शुरूआत जुमे खां थींदी।

ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम ईंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जी शमसी तवानाई मनसूबो जल्द मुकमल करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त जी बी लाइ शमसी मनसूबे जो समूरो ख़र्चु फाकी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। अमन अमान बरकरार रखण में आलमनि जो अहम किरदार आहे। आलम क़ौम खे भी अहम किरदार अदा करे सघनि था। क़ौमी पैगाम अमन कमेटी खे ख़िताब कंदे बाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे मुतहिद थियणो पवंदो। हिन फोरम ज़रिए बि मुल्क में अमन जो पैगाम वञणु घुर्जे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि वसीलनि में वाद ऐं टैक्स उगड़ण बाबति इजलास। एक्साइज सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। मुरादली शाह पारां टैक्स उगड़ण वारो निज़ाम वधीक सराइतो बणाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त वसीलनि में वाद अवामी फलाह तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फराहमी लाइ अणतर आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में तोहीन अदालत केस जी ॿुधणी। कमीशन जो चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर अदालत में पेश। टिन्ही आफ़िसरनि अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त दरख़्वास्त गुज़ार जो इंटरव्यू वठण लाइ तयार आहियूं, पर ख़ुसूसी कोटा ते जायूं घटि आहिनि। ख़ाली जायुनि बाबति फ़ैसिलो करण हुकूमत जो इख़्तियार आहे। अदालत जी दरख़्वास्त गुज़ार खां इम्तिहान वठण जी हिदायत। हुकूमत खे ख़ुसूसी माण्हुनि जी पोस्टनि बाबति कोटा ते नज़रसानी करण जो हुकुमु।

पर अखिल भरिसां जवाबदारनि में पसंदि पड़णो कंदड़ नौजवान जो घर ड्राई पट करे छॾियो। मुबारकपुर थाणे जे हद में निहाल मुहतम ऐं फना खातून जे घर खे ड्राई पट कयो वियो। नौजवान जो चवण आहे त अदालत में पढ़ण बावजूद जवाबदारनि पुलिस सां गॾिजी घर ड्राए छॾियो आहे। जवाबदार क़तल करणु चाहिनि था, तहफ़ुज़ फराम कयो वञे। जो वनवा में वेठल भेण के कत्ल कंदड़ जवाबदार भाव गिरफ्तार। गोठ गवर बंगलाणी में पंज ॾींहं अॻु वनवा में वेठल जन्नत मासून बंगलाणी खे भाउ कतल कयो हो। पुलिस मूजिब कतल केस में मक़तूल नारी जे भाउ सफ़ुल्ला बंगलाणी खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तेरे जाने के बाद देखिए हर पीर से जुमा रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सेंटर दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
0: सिर्फ स्मेल रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा, रॉयल एक्सपीरियंस कहाँ बिकट, रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
4: गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान, आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं, लाख ब्यूटी।
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा, रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: हो GFM 91.6।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज।
2: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
1: यार को हमने जा बजा देखा।
2: अजीब अजीब तरह के रिश्ते आने लगे अम्मा, तो सब सोच के परेशान होती कितना मत का क्या होगा।
0: एक दिन ऐसा भी आया जब तुम मुझसे पागलों वाली मोहब्बत करो।
1: कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब।
3: दिन में चमगादड़ देखा है तुमने कभी?
1: कहीं मुमकिन
3: बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो तो।

0: की शक्ल सलमान से नहीं मिलती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ।
1: पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता, फिर अपने आप को आदमी।

अगर मोहब्बत ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सकें, उसके बारे में दिन और रात सोचते रहे, उससे बात करने के बाद यू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड, तो हाँ मुझे है मोहब्बत उससे।

0: कोई इश्क मानता है, कोई मोहब्बत मानता है,
1: और जो ये सब कुछ नहीं मानता वो ख्वाहिश का खत्म होना मानता है।
2: कहीं आशिक ने आज
3: मैं बहुत डिफरेंट इंसान, मेरे साथ रहना आसान नहीं।
2: कहीं आशिक ने आज की
4: सूरत मुझे आसानियां पसंद नहीं।
2: सीना बिरयों दिल जगा देखा,
4: महंगे कपड़े पहन के चीथड़ों में फिरने वाले लोग हमें जानवर नजर आते। दिल अजीब शहर है, अजीब चीजें मांगता है, अजीब चीजें करने को।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM

खूबसूरत जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी दादा मियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की कामयाबी है, कुछ कुवतन UAE से लगापा खराब करने की कोशिश कई पर नाकाम रहा। पाकिस्तान गालियन वाले समूरे अमल में टाकड़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान

अमेरिका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम बर्पा करे छॾींदासीं। आबदार मोस जुमे ॾींहुं खुली वेंदो, को बि टूल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अलसानी ऐं UAE सदर शेख ज़ायद बिन अल नहान सां धारदार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो न थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे, लबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल मुआदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो इहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो मुआदे जी भजकड़ी हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़ी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआदे ते बाज़ाबता तौर अमल जी शुरूआति जुमे खां थींदी। ईरान ऐं अमरीका में मुआदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम ईंदो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: सिंध की होती है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
4: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिया?
5: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस होगा
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा,
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: से बात

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: किसान जी कोशिश आए तो चौपर में मुस्तक लमन कायम किए। रालियन दौरान मुंझारे जड़न मामलन के गुजो रखियो वियो। आवाज से राक्षी पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असर नथो पवे। गालियन जे नुक्ते के गुजो रखण गालियन जी कामयाबी लाए जरूरी हो। गालियन दौरान राब्ते वारो अमल वजीर आजम जे जरिए थी रहो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क्यादत दां वञे थो।

अमेरिका में मुआहदे से पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वध्यो आहे। पाकिस्तान वरी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

सिंध जी नई माली साल जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रूपयनि जो कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रूपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निक सुपाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रूपयनि मां घटाए 385 अरब रूपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते जी तरक़ियाती बजट 21 अरब रूपयनि मां घटाए 17 अरब रूपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटाई 38 अरब रूपयनि मां घटाए 25 अरब रूपया करण जी तजवीज़। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रूपयनि जो कट लॻंदो। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रूपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रूपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। नए माली साल जे तरक़ियाती बजट में का बि नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। केटीए न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई जो फ़ैसिलो। केटीए न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3600

30 अरब 80 करोड़ वक्स ऐं सर्विस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जी नई माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर मुराद अली शाह पेश कंदो।

वफ़ाक़ी हुकूमत बजट में पीपल्स पार्टी जा खदशा खत्म करण लाइ कोशिशूं तेज करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म साकदार मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा खदशा ख़त्म करण जी कोशिश। मुलाक़ात में नवीद कंवर, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ।

वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि वसीलनि में वार्ड ऐं टैक्स उघाड़ण बाबति इजलास, एक्साइज बोर्ड ऑफ रेवन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। वार्ड अलीशाह पारां टैक्स उघाड़ण वारो निज़ाम वधीक सराइतो बणाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त वसीलनि में वार्ड अवामी फलाह, तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फ़राहमी लाइ अणटर आहे।

0: सिंध में कारें जी कुदी रसम तां वधीक हिकु नारी क़त्ल थी वई। कंबट जे ॻोठ सताबो में जवाबदार सोनो बारे जो कार इल्ज़ाम हणी पंहिंजी सोट समिया बारी जो खे क़त्ल करे छॾियो। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार जो नारी लाले क़त्ल करण जो एतिराफ़ी बयान बि साम्हूं अची वियो। भेट शाह जो जवाबदार फायरिंग करे भाजाई खे सख़्त ज़ख़्मी करे छॾियो। जरार शाह कॉलोनी में जवाबदार असाब कोसो गोलियूं हणी अंसार कोसो खे ज़ख़्मी कयो। पुलिस जो चवणु आहे त औरत खे टे गोलियूं लॻल आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

लिखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: ब्लॉक न करूं तुझे बैन।
1: टी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा मेरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कर।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चंद जे नए माली साल जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपयनि जो कट लगायो वियो। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निच उपाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। सिहत खाते जी तरक्याती बजट 21 अरब रुपयनि मां घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटताई 38 अरब रुपयनि मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज़। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ डि॒नी वई। नए माली साल जे तरक़ियाती बजट में बि का नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। केटीए न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जूं तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो खातो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जे नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99.74 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70.94 अरब रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30.80 अरब, वर्क्स ऐं सर्विसिस खाते लाइ 31.59 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40.86 अरब रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर फुआद अली शाह पेश कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ममलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ठाहींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में बजट वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो।

0: माली साल ॿ हज़ार छवीह सतावीह लाइ पंजाब जी 5,903 अरब जी बजट पेश। नाणे वारे वज़ीर मुश्तफ़ा शुजा पंजाब असेंबली में बजट पेश कई। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 7 ऐं पेंशन में 3.5% वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती कमनि लाइ अरबें रूपया रखिया विया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाइ 25,35 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवन्यू लाइ 19 अरब ऐं पुलिस लाइ 12,88 करोड़ रूपया रखिया विया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाइ 270 अरब, मास ट्रांसिट सिस्टम लाइ 26,60 करोड़, हारी कार्ड ऐं ज़रई तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 10 अरब रखिया विया। अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम बर्पा करे छॾींदासीं। आपरा हरमुस जुमे ॾींहुं खुली वेंदो, को बि टोल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख जायद बिन अल नहान सां धार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो नाहे थींदो, ईरानी क़यादत माक़ूल आहे। लबनान जंग मामूली तकरार आहे, इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल मुआदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो इहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

किया है सिंध जी दिल किया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: कलंदर 14 अक्टूबर से जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी एफएम सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर आज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जिए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: ये FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल वाइदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमलो या कब्ज़ो वाइदे जी भञकड़ी हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में गाॾियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। वाइदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ जी शुरूआत जुमे खां थींदी।